0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपना प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड मॉर्निंग टाइम राइट नाउ 7:06।
2: Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: नमस्ते।
7: ओला।
6: अस्सलामुअलैकुम।
8: बोंजूर।
9: नी हाओ।
10: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
11: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
12: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prizes, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
13: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
14: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
15: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
16: 33 डिग्रीज, लो भी जाएगा 33 डिग्रीज, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 52% पर।
15: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो टू बी ऑनेस्ट, सुबह का अलार्म मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन सुबह की ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एकदम ऐसे फुल अपने टशन में निकली थी, सुबह सुबह गाड़ी स्पीड में चला रही थी, सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हो गई, अपने आप वापस लाइन पे आ गई कि बेटा इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। एक तो सुबह सुबह 5 बजे उठो, उसके बाद फाइन लग जाए। फिलहाल गाड़ी से याद आया, अगर आप भी मेरी तरह गाड़ी रेंट करना चाहते हैं, लुकिंग फॉर अ रेंटल कार एनी टाइम, सिया फ्रॉम सेल्फ ड्राइव इज अवेलेबल 24/7 एंड इवन अंडरस्टैंड 40 languages इंक्लूडिंग जेंजी लिंगो। सो जस्ट सर्च, चूज एंड बुक योर perfect car in few minutes. Try Sia today at selfdrive.ae. Also, we're talking about this research that says on an average, हर employee अपने office में 3.5 घंटे से ज़्यादा काम करता ही नहीं है। तो ये जो 8-8, 9-9 घंटे काम करवाते हैं, बंदे जो है वो time pass करते हैं, क्योंकि maximum brain peak productivity 3.5 घंटे की होती है। तो this is what we're discussing right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

सबके प्रायोरिटीज अलग होते हैं। यहाँ नींद नहीं खुल रही है और आतिफ साहब का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मानसी, कुछ रोमांटिक सुना दो। तो सबके प्रायोरिटीज अलग होते हैं, इन्हें सुबह सुबह 7:30 बजे कुछ रोमांटिक सुनना है तो बस आइए। तो जो भी रोमांस के मूड में है सुबह सुबह, उन सभी के लिए कमिंग अप नेक्स्ट इन जस्ट अ बिट।

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sister and subha subha Binish, good morning.
1: Good morning.
0: यार ये एनर्जी बड़ी अच्छी है. सुबह सुबह कितनी चाय कॉफी पीते हो या फिर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन?
1: नो, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन सुबह जल्दी जाना पड़ता है बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग लाइक 45 किलोमीटर फ्रॉम माय होम टू वर्क. वांट टू रिचार्ज बिकॉज़ फिर जाके कॉफी भी बनानी होती है ना.
0: नहीं, अपने लिए बनानी होती है कि सबके लिए बनानी होती है?
1: नहीं नहीं, सबके लिए.
0: हाँ, वैसे ऑफिस की कॉफी का ना स्वाद कुछ और होता है. आई थिंक हमें फ्री की चीजों का स्वाद अच्छा लगता है. मुझे भी बड़ी अच्छी कॉफी लगी सुबह सुबह.
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है.
0: But Vinish, I was talking about most of the employees are productive at work only for 3.5 घंटे. आपके ऑफिस में कितने घंटे की शिफ्ट है?
1: और मेरे लिए 10 hours
0: से कम. 10 hours?
1: नहीं, बिल्कुल ठीक है. Like 3-4 hours ही है productive.
0: नहीं, but what do you do for 10 hours? वहीं रह जाओ ना. ये 45 minutes आना जाना भी क्यों करना है? 45 kilometers, sorry.
1: Actually, बस अगर family नहीं होती तो उधर ही रहते.
0: But ये 10 घंटे कराते क्या? आप करते क्या हो? तो आप क्या करते हो बाकी के बचे हुए 7 घंटे? क्योंकि 3.5 घंटे ही हम प्रोडक्टिव हैं. रील्स वील्स देखते हो, चाय कॉफी बार बार पीते हो, नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा के. आए हाय हाय, सरकारी नौकरी का फायदा तो है, नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा के देख लो. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वियर्ड वर्क कल्चर दैट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो. अगर बंदा 3.5 घंटे में आपके 8 घंटे का काम कर रहा है तो उसे घर जाने देना चाहिए. मेरा वोट है. देखो, वो आप अच्छे एम्प्लॉइज में से हो जो वर्क फ्रॉम होम में काम कर लेती हो, वरना आधे से ज्यादा लोग घर के काम ज्यादा करते हैं, ऑफिस के काम कम करते हैं वर्क फ्रॉम होम से. वो एक दूसरी रिसर्च है. बट 10 घंटे तो यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तब आप घर कितने बजे जाओगे? इतने बजे निकल रहे हो तो? आज तो मैं भी आपकी कैटेगरी में हूँ. मैं रात को 9 बजे निकलूंगी. तो आई एम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर टुडे. अब अगले एक हफ्ते तक मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा एट वर्क. हाँ, यू विल ऑफ कोर्स व्हाइल यू आर गेटिंग बैक होम आई विल कम बैक हियर. 5 बजे मैं फिर से आ जाऊंगी. बट यू हैव अ ग्रेट डे विनेश. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड आज
1: कोई ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन.
0: मैं कह रही हूँ नेटफ्लिक्स की कोई रिकमेंडेशन चाहिए हो आज ऑफिस में टाइम पास करने के लिए तो मुझे बोल देना. ठीक है, चलो बाय.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, द टाइम राइट नाउ 8:07।
2: Bollywood.

जो दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नी नो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle A1। आई मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: बॉलीवुड ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix with Zora, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. The Big Mix miss kiya gaya?
7: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
8: हाय टीना।
9: हाय।
8: इतना क्यों ब्लश कर लिया?
9: मेन कैरेक्टर एनर्जी सुन के।
8: सो क्यूट यार, यू आर सो इजी टू प्लीज, मतलब कुछ भी प्यार से बोल दो आप हंसते लग जाओगे। द लेटर आई एम गिविंग यू इज द लेटर एस। एस से आपको मुझे बताना है सेलिब्रिटी का नाम। गो।
9: सायरा बानो।
8: वेरी गुड। अब एस से बताओ मूवी का नाम।
9: साथ तेरे।
8: है साथ तेरे। You're just making stuff up.
9: Okay, साथ ही।
8: चलो I'll give it to you, साथ ही। ओके, अब एस से बताओ प्लेस। टीना। आप ना शारजा जाओ और शारजा से वापस मत आना।
9: I was just looking into the Indian map, you know, in my imagination. And I did not think about Sharjah.
8: Oh my God, S से बताओ thing.
9: Thing.
8: You are such a sport, yeah, Tina. आपसे बात करके बहुत मजा आया। गेम में चाहे था फ्लॉप क्यों ना रहे।
6: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
10: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar sunna.
6: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Extremely slow moving traffic is worked. Agar aap hain around Dera Gurer side, matlab bumper to bumper situation hai. Agar gaadi haan bolti to kuch aisa hi bolti, beep beep beep. It is kind of standstill. Traffic on Sheikhzad also slow moving. Filhal it's showing a 32 minute delay. Sheikh Mohammed bin Zayed, not extremely bumper to bumper. Still there's traffic, 28 to 30 minute delay. There's heavy traffic if you're on the Alkuz industrial area. Plus agar aap Hesse street pe hain, towards JVC all the way towards Motor City, there's traffic us route pe bhi. Iske alawa agar aapne kuch report karna hai, bataiye mujhe 800-1062 par.
6: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
12: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: You know, whenever I look at Hrithik Roshan, मुझे से लगता है कि ज़िंदगी में ना instant body transformation हो जाना चाहिए. मतलब within 5 minutes abs wabs बन जाएं. अब instant body transformation नहीं हो सकता है, लेकिन instant hair transformation हो सकता है. Good morning, filling in for Sid. मैं हूँ Mansi, and अगर आप भी अपने ग्रे हेयर कवर करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट इन जस्ट 5 मिनट्स विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली. इट्स अमोनिया फ्री फॉर्मूला एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल, जो आपको देगा वाइब्रेंट नेचुरल लुकिंग कलर. वर्क्स ब्यूटिफुली इवन ऑन थिक हेयर एंड इजी इवन एप्लीकेशन है. दे गॉट द इजी कोम एप्लीकेटर विच मेक्स कलरिंग एज सिंपल एज कोम्बिंग योर हेयर. सो गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, वाइब्रेंट कलर एंड अ नेचुरल लुकिंग फिनिश विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर विच इज मेड इन इटली.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Good morning, it's 8:35. Filling in for Sid, main hoon Mansi, and I am currently obsessed with this actor Yash. Mera hota hai, you know, dusron ke patiyon pe mera crush ho jata hai by default. Ab jaise hi maine Toxic ka ye viral gana dekha, I had to Google him because he is very very hot. And yeah, judge me, I haven't seen KGF 1 or 2, to mujhe pata hi nahi tha ki ye kaun hai. And uske baad maine jitni bari ye gana dekha, I don't think so makers ne bhi dekha hoga. Ye wo gana hai agar aaj hum chote hote ya ye gana TV pe आता तो मम्मी कहती चलो बेटा बच्चों के देखने वाला गाना नहीं है, बट ये तो पहला गाना था. अब दूसरा गाना तारा सुतारिया के साथ आया है फ्रॉम द सेम मूवी, एंड वो भी उतनी ही तबाही मचाएगा. टॉक्सिक इज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, एंड जो मूवी है कहा जा रहा है इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी है, मेड विद अ बजट ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 crores. द मूवी वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड इन डिसम्बर ऑफ 2023, एंड इट इज ऑफकोर्स यश 19 के बैनर, जो यश जो लीडिंग एक्टर हैं उन्हीं की प्रोडक्शन हाउस की ये मूवी है, एंड इट्स हिज 19th फिल्म, एंड द मूवी वाज साइमल्टेनियसली शॉट इन कन्नड़ा एंड इंग्लिश. Of course, Hindi version भी आएगा, but officially अब ये postpone हो के scheduled है on the 26th of August. You know what होता है मेरे साथ, मैं सिर्फ गानों के लिए movies देखने चली जाती हूँ. Just to watch this song on the big screen, I will watch Toxic in theaters.

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग द टाइम राइट नाउ 9:07।
2: Bollywood.

0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: Spin big with Big Ticket.
8: 20 million dirham grand prize.
7: 1 million dirham big spin chance.
8: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
7: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 61% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2। सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: All right, patchy traffic at the moment. अगर आप खबानीज के पास हैं, there is a 12 से 15 मिनट का डिले on the Sheikh Mohammed bin Zayed. Also slow moving still if you are Sharjah bound. Data at least बहुत ही slow moving traffic आपको मिलेगा. इसके अलावा I hardly see any traffic. अगर आप कहीं अटके हैं, बता सकते हैं 800-1062 पर.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सिंह की आवाज, मेरी आवाज वैसे तो आप शाम को सुनते हैं, आज सुबह भी सुनेंगे। थैंक्स टू सिड हु इज ऑन डैडी ड्यूटीज। गुड मॉर्निंग, कीपिंग यू कंपनी हियर, मानसी। एंड फिलहाल It's time for the big Bollywood quiz. Your chance to win open movie tickets. Weekend is right here. Go and watch any movie that you feel like. Ab aaj hi ke din ye movie back in the 90s release hui thi. Yes, in 1993. I love this movie. As a kid, ye movie hum millennials ne multiple times dekhi hai. And Kunal Khemu again, a young Kunal Khemu was in the movie. Let me play your dialogue.
1: Hi.
2: Hi.
1: Ye dekho, main tum log ke liye kya laya hoon. Pizzas and pastries.
2: मामा जी, आपको कुछ नया नया नहीं लग रहा है?
1: हाँ, लग तो रहा है, कुछ टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, तुम लोग लड़ झगड़ नहीं रहे हो। I like it.
2: मामा जी, आप कुछ भूल रहे हैं।
1: क्या?
2: आपने तो वादा किया था
0: आमिर खान, जूही चावला एंड बहुत सारे बच्चे। अगर आपको मूवी याद आ गई है जो आज ही के दिन बैक इन 1993 रिलीज हुई थी, देन सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन 0543091062। यू कैन आल्सो गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062।
3: बीट 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

am so surprised right now. Raja Hindustani. Messages आ रहे हैं Raja Hindustani. 1993 की मूवी है. आमिर खान ऑफ कोर्स, कुणाल खेमू दोनों राजा हिंदुस्तानी में थे. बट जूही चावला कहाँ दिखी आपको राजा हिंदुस्तानी में? Giving you a chance to win open movie tickets, you have Big Breakfast, Mansi.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, द टाइम राइट नाउ 10:05।
2: Bollywood.

0: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 68% पर.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2.
5: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
6: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
3: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.in.

0: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
1: Good morning, filling in for Sid and Mansi. This is the Big Breakfast right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. And here, you had open movie tickets to win. You had the chance. Raj was saying that I was trying very hard, so I said that time takes time. Beautiful girls' call connect to me, Raj, time takes time.
2: आपको
1: करनी चाहिए ना तारीफ, एक तो आप कर नहीं रहे हो,
2: आपने मौका ही नहीं दिया।
1: ऊपर से सुबह सुबह ऑफिस में दो तीन लोग आके मुझे बोल चुके हैं यू आर लुकिंग वेरी पेल, क्योंकि मैं बिना मेकअप के सुबह सुबह आ गई हूँ, तो अब मैं खुद को तो मोटिवेट करूंगी ना। नहीं नहीं वो पेल कह रहे हैं सर, सनशाइन नहीं कहा उन्होंने मुझे, वो तो आपने कहा है, थैंक यू। वो कह रहे हैं आप पेल लग रही हैं।
2: अच्छा हाँ। नहीं मैं उनको गलत गलत गलत साबित करने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ 106.2 की सनशाइन है।
1: और थैंक यू सो मच, बस ऐसी ही टिकट ले जाओ, आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है।
2: You are doing fabulous job in absence of Sid Paji. Aaj Sid Paji kahan hai, unki awaaz bhi sunai aa rahi hai.
1: Are Sid is doing daddy duties, his son is not keeping well, to aaj wo apne bete ke saath hai.
2: Ah, I see. Okay. Haan. God bless him and
1: God bless him. Bahut sari duaein and jaldi se jo hai kal aa jaye Sid. Varna meri tabiyat Monday ko kharab ho jayegi. फिलहाल राज मूवी के बारे में जो मैंने आपको इतने सारे हिंट्स दिए, बहुत सारे लोग राजा हिंदुस्तानी सोच के बैठे हैं, सही जवाब क्या है?
2: हम हैं राही प्यार के।
1: एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चाइल्डहुड मूवीज।
2: इंडीड इट इज, यस, कुमार केनुज इनोसेंस, इवन इन राजा हिंदुस्तानी 2 ही लुक्ड वेरी इनोसेंट चाइल्ड।
1: या बट हमें राही में तो वो बहुत ही छोटा था, वो सीन याद है वो थर्मामीटर गर्म दूध में डालता है कि मामा जी मुझे बुखार है।
2: यस यस यस, आमिर खान, करेक्ट।
1: फेवरेट गाना कौन सा है आपका इस मूवी से सर?
2: टाइटल सॉन्ग
1: कौन सा? मुझसे मोहब्बत का इकरार, काश कोई राज मुझे प्यार।
2: आपको भी मिल जाएगा आपकी क्या कहते हैं आपकी जीवन जीवन
1: जीवन साथी। आई एम लुकिंग फॉर जीवन साथी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर लाइक साथी, दैट्स इट। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बट फिलहाल राज कंग्रेचुलेशंस, दो टिकट्स आपके हुए।
2: थैंक यू,
1: जाइए देखिए जो मूवी आपका दिल चाहे एंड हैव अ वंडरफुल डे एट वर्क।
2: थैंक यू सो मच,
1: बाय बाय।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ
3: सुभाष, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप रियलिटी टीवी शोज देखते हो?
4: कोई भी नहीं देखता हूँ, मेरी बीवी सब कुछ देखती है, मैं कोई भी नहीं देखता हूँ।
3: तो ये रिसर्च ही कहती है जो लोग रियलिटी टीवी शो देखते हैं क्योंकि उसमें बहुत ड्रामे बहुत कलेश होते हैं, वो रियल लाइफ में बहुत पेशेंट होते हैं और बहुत ही ड्रामा फ्री होते हैं। तो आपकी बीवी देखती है तो मुझे बताओ क्या वो जिंदगी में बहुत ही काम बहुत ही पेशेंट?
4: सच में गड़बड़ हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सभी रियल है।
3: तो मतलब नहीं है वो शांत स्वभाव की?
4: अरे ऑनियर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना थोड़ा।
3: तो मतलब यू डिसएग्री विद द रिसर्च बिकॉज योर वाइफ वॉचेज अ लॉट ऑफ रियलिटी टीवी, तो शी इज हैज जीरो पेशेंस, शी इज ड्रामेटिक।
4: उतना मत बोला करो, घर जाके खाना खाना होगा।
3: बट यार मैं खुद बहुत रियलिटी टीवी देखती हूँ, अब आप जो है मुझे सुनते हो आपको लगता है कि मैं ड्रामेबाज हूँ कि नहीं, मैं बहुत शांत? क्या हाँ
4: इंडस्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है।
3: मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हूँ, सुशील, सुंदर, शांत।
4: नहीं तो लगते नहीं है।
5: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: All right, not really big but patchy traffic at the moment. If you're on the Dubai Hills Mall, there's heavy traffic. Marinas, if you're going to JBR, weekend shuru ho gaya kya? Hesa Street pe bhi traffic hai, JVT, JVC, all the way towards Dubai Motor City. Anything else you'd like to report, let me know. 800-1062 par.
5: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Good morning, filling in for Sid. Main hoon Nancy. This is the Big Breakfast right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Ek kamal article maine padha that says ki aap officially UAE expat ban gaye ho if you're doing these things. Number one is you talk about Vasta. Everywhere you talk about Vasta, chahe wo hotel ka reservation ho, koi deal ho, a job ho, it is all about Vasta for you. Number two, क्लाउड सीडिंग एक्सपर्ट्स बन चुके हो आप. मतलब कोई एविडेंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आप ऐसे प्रेडिक्ट करते हो जैसे आप नासा के साइंटिस्ट हो अगर एक बूंद बारिश की आपके विंडस्क्रीन पे गिर जाए. नंबर थ्री, यू सडनली आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी. मून साइटिंग्स आपको एक्साइट करने लगती है. नॉट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मून साइटिंग्स, बट दैट हेल्प्स यू डिसाइड कि अगले दिन काम पे जाना है कि नहीं जाना है. नंबर फोर इज कि आप दूर से देखकर नेशनैलिटी पहचान लेते हो. यू हैव बिकम अ नेशनैलिटी डिटेक्टिव. एंड इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन एविडेंस नहीं है. ये कम्स विद कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेइंग इन दिस ब्यूटिफुल कंट्री विद मल्टीपल नेशनैलिटी फॉर ईयर्स. दिस अनदर थिंग, आपकी वोकैबुलरी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाती है. यू स्टार्ट कॉलिंग दुबई दुबई आफ्टर स्टेइंग हियर फॉर लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग टाइम. मर्डिफ मर्डिफ बन जाता है. एंड ऑफकोर्स खलास इंशाल्लाह ये हमारी रोज की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाते हैं. सो या, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट्स से मैच करते हैं देन ऑफिशियली यूएई में आ चुके हो, एक्सपैट हो तुम, हो गए हैं 10-11 साल आपको.

0: 2. The Beat of Bollywood. The Big Mix with Zohra. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: 10 से 12 मिनट का डिले ऑन हेसे स्ट्रीट. देर इज ऑल्सो अ लिटिल स्लो मूविंग ट्रैफिक इफ यू आर ऑन द दुबई मरीना गोइंग टूवर्ड्स JLT. इसके अलावा आई हार्डली सी एनी ट्रैफिक. पैची नॉट रियली बैड ऑन शेख जायद. लाइक 12 से 15 मिनट का डिले विच इज लिटरली नथिंग. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट बताइए मुझे 800-1062 पर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Vic.

एंड इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. मैं आपसे मिलूंगी अब शाम को 5 बजे. मैं कह रही हूँ मैं एम्प्लॉई ऑफ द ईयर हूँ. आज सुबह आई वाज कीपिंग यू कंपनी, आई वाज फिलिंग इन फॉर सिड. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट एंड टाइम फॉर मी नाउ टू गो एंड ग्रैब सम ब्रेकफास्ट. एंड आई एम हेडिंग स्ट्रेट टू पापा जॉन्स. इन फैक्ट आई डोंट नीड टू गो देयर, आई कैन ऑर्डर पापा जॉन्स एंड टॉय स्टोरी. 5 पिज्जाज हैव लैंडेड, ब्रिंगिंग मूवी इंस्पायर्ड फ्लेवर्स टू योर नेक्स्ट मील. ट्राई द स्पेस रेंजर रॉनी लोडेड विद डबल पेपरोनी फॉर अ बोल्ड मीटी बाइट. राउंड अप योर एपेटाइट विद द शेरिफ्स राउंड अप topped with barbecue chicken and onions. Reach for the pie and enjoy the delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any 2 or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams and get your hands on a collectible with your qualifying order while the stocks last. So better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: Take Unlimited. Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, Miss Kiya Gya.
3: कर ही नहीं सकते, चाहोगी तो नहीं कर सकते.
4: हाय टीना.
5: हाय.
4: इतना क्यों ब्लश कर लिया?
5: मेन कैरेक्टर एनर्जी सुन के.
4: सो क्यूट यार, यू आर सो इजी टू प्लीज. मतलब कुछ भी प्यार से बोल दो आप हंसते लग जाओगे. द लेटर आई एम गिविंग यू इज द लेटर एस. एस से आपको मुझे बताना है सेलिब्रिटी का नाम. गो.
5: सायरा बानो.
4: वेरी गुड. अब एस से बताओ मूवी का नाम.
5: साथ तेरे.
4: है साथ तेरे. You're just making stuff up. चलो I'll give it to you. साथिया. ओके. अब एस से बताओ प्लेस. टीना. आप ना शारजा जाओ और शारजा से वापस मत आना.
5: I was just looking into the Indian map, you know, in my imagination. And I did not think about Sharjah.
4: Oh my God, S से बताओ thing.
5: Thing.
4: You are such a sport, yeah, Tina. आपसे बात करके बहुत मजा आया. गेम में चाहे था आप फ्लॉप क्यों ना रहे.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by insurancemarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Early in the morning.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, Miss Kiya Gya.
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
3: हाय टीना.
4: हाय.
3: इतना ही ब्लश कर लिया.
4: मेन कैरेक्टर है ना इस फिल्म के.
3: सो क्यूट यार, यू आर सो इजी टू प्लीज. मतलब कुछ भी प्यार से बोल दो आप हंसते लग जाओगे. द लेटर आई एम गिविंग यू इज द लेटर एस. एस से आपको मुझे बताना है सेलिब्रिटी का नाम. गो.
4: शायरा बानो.
3: वेरी गुड. अब एस से बताओ मूवी का नाम.
4: साथ तेरे.
3: है साथ तेरे. You're just making stuff up. चलो I'll give it to you. Sadhya, okay. अब S से बताओ place. Tina. आप ना शारजा जाओ और शारजा से वापस मत आना.
4: I was just looking into the Indian map, you know, in my imagination. And I did not think about Sharjah.
3: Oh my God. S से बताओ thing. You are such a sport, yeah, Tina. आपसे बात करके बहुत मजा आया. गेम में चाहे था फ्लॉप क्यों ना रहे.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 1:06 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, आज तो बिल्कुल ब्राइट एंड सनी, बिल्कुल क्लाउडी नहीं होने वाला है। धूप कड़क आपके ऊपर होने वाली है। ह्यूमिडिटी ऑल्दो इज अ लिटिल ऑन द लोअर साइड एट 45% राइट नाउ। हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे एंड लोज आज एक्सपेक्टेड है टू टच अबाउट 33।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Bilkul sahi. Good afternoon. This is The Big Mix with me, Zohra, all the way until 5. It is the first hour of the show. Pehle ghante mein hum roz khelte hain ye, which is the Big Bollywood Undercover. Main aapko char clues deti hoon. Clues ko sunke aapko batana hota hai ki kis celebrity ki baat ho rahi hai. Who am I trying to disguise in these cues, in these clues. आज की भी clues मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन आई थिंक ईजी है यार, बहुत ईजी हो जाएगा. चलो मैं कर देती हूँ ईजी आपके लिए. ओके, पहला क्लू. शी इज़ मैरिड टू अ वेरी फेमस एक्टर हिमसेल्फ. फीमेल एक्ट्रेस है. चलो पहला एक एक्स्ट्रा क्लू. शी इज़ मैरिड टू अ फेमस एक्टर हिमसेल्फ. शी इज़ नोन फॉर हर रॉ क्वर्की लाफ. वो ऐसे हंसती है, ऐसे हंसती है, सीरियस सिचुएशन में हंस देती है और इतने रॉ तरीके से खी खी खी खी करके हंस देती है. शी डजंट केयर. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी कैंडिड ऑफ हर टू डू. शी इज़ नोन फॉर हर रॉ क्वर्की लाफ. रानी मुखर्जी जो है वो इनकी कज़न है एंड शी इज़ नोन फॉर हर आइकॉनिक पेयरिंग विद आर वेरी ओन किंग खान. शी इज़ मैरिड टू अ वेरी फेमस एक्टर हिमसेल्फ. इनको जाना जाता है इनके रॉ क्वर्की लाफ्टर से, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी वैसी है कि हंसते रहो, हंसाते रहो, मजाक करते रहो, मस्ती करते रहो. रानी मुखर्जी इनकी कज़न है एंड शी इज नोन फॉर हर आइकॉनिक पेयरिंग विद द किंग खान हिमसेल्फ. किसकी बात कर रही हूं मैं? हु इज दिस फीमेल एक्ट्रेस? इफ यू थिंक यू नो द आंसर, कॉल मी 800-1062 पे. दैट्स 800-1062.
3: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी,

0: real cool like.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिल्कुल सही, जोहरा के साथ on the Big Mix. फिलहाल हम खेल रहे हैं The Big Bollywood Undercover. With me है मल्लिका. Hi मल्लिका.
3: Hey Zohra, how are you?
2: प्रैक्टिस कर ली आपने जोहरा बोलने की? तब से जो डियर डियर बोल रहा, आप करते क्या हो? ऐसी फीलिंग आ रही है आप एचआर में हो?
3: No, I am into banking.
2: No wonder. You have a very formal way of talking. You're used to talking to your customers, saying hello dear, we'll take care of your request dear.
3: Yes, yes.
2: Oh my god. अच्छा यार, मल्लिका आप बॉलीवुड के फैन हो?
3: बिल्कुल.
2: बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से आपने गेस किया है ऐसे लग तो रहा है, बट आई एम गोइंग टू पुट यू थ्रू अ स्मॉल टेस्ट.
3: मैंने आपका जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जब हाफ निकल चुका था.
2: एक दे दो, मैं उसमें ही बता दूं. अच्छा मल्लिका, मुझे बताओ कि आज मैंने किस सेलिब्रिटी की बात की है? देखो पहली ताली बजा दी मैंने आपके लिए. काजोल, ओके, यू आर अ बिग बॉलीवुड फैन, इतने प्रो हो, मुझे आपके साथ एक छोटा सा एक और टेस्ट करना है, ठीक है?
3: ठीक है.
2: सी, काजोल इज नोन टू बी दिस क्वर्की पर्सनालिटी, है ना, हंसती रहती है, की करती रहती है, शी विल नॉट कंट्रोल हर लाफ्टर, एंड स्पेशली इफ शी इज विद शाहरुख खान हू इज हर बेस्टी, तो बिल्कुल भी नहीं करती है ना. तो मुझे चाहिए आप इन्हीं के वो बुलबुले यू नो पन में और उसी टोन में ये उनका डायलॉग बोलो, व्हिच इज राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, चीटर.
3: Okay.
2: Okay.
3: Do you want
2: me to do it first?
3: Okay.
2: Rahul is a cheater. He is a cheater. Cheater. ये करो अभी आप.
3: आपने बहुत अच्छा कर दिया.
2: मैंने इंस्पिरेशन दे दी आपको, अभी आप कर दो. ड्रामे में बहुत करती हूँ.
3: Okay. I'll try. No problem.
2: Go for
3: okay.
2: It.
3: Mm. Okay. Rahul is a cheater, he is a cheater, cheater.
2: Yay! I love it. Love it, love it, love it. आप जितने ऐसे लगते हो ना फॉर्मल और सीरियस होंगे, ऐसे लगता है घर जाके वो सारा फॉर्मलनेस जो निकल होता है वो निकल जाता है और ये अंदर
3: नहीं,
2: की
3: नहीं मैं इतना फॉर्मल नहीं हूँ. I was also a radio presenter in my past.
2: Oh my God, अरे हम तो फिर same industry के हैं, दो दोस्त.
3: बिल्कुल.
2: आपकी आवाज में है तो दम वही, बट आपने जैसे डियर बोल दिया ना मुझे, मैंने कहा ये क्या बात हो गई यार. But super super fun talking to you. यार मल्लिका, एक तो नाम भी ऐसा आपका कि बोलने में मजा आ जाए. I don't know why. वो बोल रही हूँ ना आपका नाम तो मेरी एक्सेंट निकल रही, मल्लिका.
3: मेरा जो लाइन था ना आरजे के टाइम पे, मैं बोलती थी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त मल्लिका.
2: अरे मेरी दोस्त तो डेफिनेटली बन जाएगी मल्लिका. लवली टॉकिंग टू यू या मल्लिका. हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड. देखा, थैंक यू डियर निकला ना फिर से डियर. चलो यार डियर, यू टेक केयर डियर, बाय.
3: ओके सौरा, बाय बाय
2: बाय मल्लिका. वेरी वेरी स्वीट, मल्लिका ने सही जवाब दिया. काजोल की बात हो रही थी यहाँ पे. एंड इफ यू थिंक यू आर गुड विथ ऑल ऑफ दीज क्लूज एंड ऑल ऑफ दैट, देन ऑल यू गॉट टू डू इज प्ले विथ मी एवरी डे यार. 800-1062 पे बस कॉल लगाना होता है.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Shivam Pathak on the lead along with Shailhada Khalibali right here on the big mix. Khalibali, तो मैं मचाने वाली हूँ यार छुट्टियों पे जाके जो मेरी कल से शुरू हो रही है. फिलहाल उसी नोट पे हम ये चार घंटे भी स्पेंड करने वाले हैं with brilliant music, fab music for you. Also fun games that we play every day on the show. In the next hour on the big Bollywood tea, क्या नई gossip मेरे हाथ लगी है ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी. But let's move on with the next song. बहुत ही प्यारा गाना ये. Mithun and Arijit Singh making sure that they bring magic to your ears. Right here on Big 106.2, this is the beat of Bollywood. My name is Zohra, aapke saath sham 5 baje tak.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक इट्स 2:10 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: मतलब सीखो यार, कुछ सीखो इनसे. प्यार व्यार की आप इतनी बात करते हो, प्यार में आपने क्या किया अपने पार्टनर के लिए? क्या मतलब ऐसे कोई गिफ्ट लेकर आए हो, किसी तरीके से अप्रिशिएट किया है? What ways have you shown your expressed your love in? You know, वो मैटर करता है बहुत ज्यादा. आजकल आप एक बस एक सिंपल सा रोज लेके आगे बोल देते हो, हम तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, यही आपका गिफ्ट है. चलो ठीक है यार, सम वेमेन आर वेरी वेरी लो मेंटेनेंस एंड उनको नहीं फर्क पड़ता. लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, आप जेन्युइनली मुझे रोज ला कर देते हो, चाय ला कर देते हो, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. बट हमेशा ऐसे नहीं होता ना, कभी कुछ तो करना होता है. थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाओ. ये नहीं बोल रही हूँ कि डायमंड वायमंड ला कर दो और राजकुंद्रा जैसे काम तो मत ही करो. बट जब ऐसी चीजें सामने आ जाती है तो ऐसे लगता है कि यार ही सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू मैच अप. मैंने अभी भी पढ़ लिया, आई डिड नॉट नो दिस, बट रिसेंटली इन एन इंटरव्यू विद यूट्यूब चैनल राजकुंद्रा ने ये रिवील किया कि एज अ वैलेंटाइंस डे गिफ्ट इन 2009 ही डिसाइडेड टू बाय द टीम, IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स. चलो गिफ्ट कर देता हूँ मैं अपनी बीवी को, वैलेंटाइंस डे आ गया यार, इतना मतलब ऐसा कौन सोचता है. बट ही डिसाइडेड, इनका काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी एंड उसके बाद जब 2009 में एंड यू नो तब तक राजस्थान रॉयल्स हैड वन द यू नो फर्स्ट सीजन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही डिसाइडेड कि चलो अब मैं ये गिफ्ट करूँगा मेरी बीवी को. उस टाइम पे अ लॉट ऑफ यू नो द सेलिब्रिटीज वर इन्वॉल्व्ड इन यू नो ओनिंग डोमेस्टिक क्रिकेट लीग टीम्स. तो ही डिसाइडेड कि 2009 में आई एम गोइंग टू बाय अ शेयर ऑफ द IPL टीम राजस्थान रॉयल्स एंड गिफ्ट इट टू माय वाइफ ऑन हर बर्थडे, सॉरी ऑन वैलेंटाइंस डे. एंड दैट्स व्हाट ही डिड. अप्रॉक्सिमेटली उस टाइम पे 82 करोड़ में उन्होंने अक्वायर किया था 11.7% शेयर ऑफ द टीम, विच इज नाउ वैल्यूड एट 16,000 करोड़ रुपीज. सो यू कैन इमेजिन यार, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट दिया है. एंड दैट brings me to the question of the day, कि आपके लिए सबसे बड़ी ऐसी कोई चीज किसी ने अगर आपको गिफ्ट की हो वैलेंटाइंस डे पे, नॉट बर्थडेज, नॉट एनिवर्सरीज, ठीक है, वैलेंटाइंस डे पे, व्हाट्स द बिगेस्ट, व्हाट्स द मोस्ट यू नो एक्सक्विजिट, व्हाट्स द मोस्ट इलैबोरेट एंड व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दैट एनीवन हैज गिवन यू ऑन वैलेंटाइंस डे, और इफ यू हैव गिवन दिस टू एनीवन ऑन वैलेंटाइंस डे, व्हाट्स द मोस्ट यू नो एक्सक्विजिट एंड एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव गिफ्टेड, मुझे बताओ 800-1062 पे, और यू कैन इवन डीएम अस 106.2 बिग एफएम पे.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&. Go for more.
4: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: नमस्ते।
2: ओला।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
6: Insurancemarket.ae.
5: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, अगर आप जा रहे हैं शारजा की तरफ तो आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक। तो R4 के पास एक कार एक्सीडेंट की वजह से एटलीस्ट अबाउट 15 मिनट डिले ऑन दैट रोड। मोटर ट्रैफिक मिल जाएगा इतिहाद स्ट्रीट E11 पे भी, दिस इज अराउंड कवेसी स्ट्रीट, वहां पे 5 से 6 मिनट का डिले। अनदर कार एक्सीडेंट रिपोर्टेड अराउंड मनखूल एरिया विच इज अराउंड D77, वहां पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा बंपर टू बंपर ट्रैफिक फॉर अबाउट 8 to 9 मिनट्स। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट लेट अस नो ऑन आवर व्हाट्सएप 0543091062।
5: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पति पत्नी और वो दो से दम दमादम ऑन द बिग मिक्स। मूवी मैंने देखी, मूवी के बारे में कुछ नहीं कहना, बट आई फील लाइक वामिका गबी इज लाइक अ वेरी नाइस एक्ट्रेस। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी तो वो है ही, शी इज वेरी प्रिटी, बट आई ऑल्सो फील लाइक शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। सबसे ज्यादा नेचुरल एक्टिंग इस मूवी में उन्होंने की थी। एनीवे ऑन दैट नोट, वी आर हेडिंग इनटू आवर नंबर 3। 247 हो चुके हैं, दिस इज द बिग मिक्स। गुड आफ्टरनून, यू आर विद मी ज़ोहरा अंटिल 5।

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हम से बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:08 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good afternoon, Zohra ke saath on The Big Mix. Filhal hum baat kar rahe hain on What's the Big Deal. Very, very interesting, yaar, kyunki ye hum sab ne कभी ना कभी लाइफ में इनमें से कोई एक चीज तो की ही है. देयर इज नो डिनाइंग दैट. आई थिंक वी ऑल शुड बी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स. ओके, थिंग्स दैट पीपल डू एट होटल्स दैट द स्टाफ रियली रियली एब्सोल्यूटली फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट हेट्स. ये बहुत सारे लोग करते हैं. चलो सारे नहीं करते होंगे, बट इनमें से कोई एक चीज तो आपने लाइफ में कभी ना कभी की होगी. ओके, नंबर वन, चेकिंग इन वे टू अर्ली एंड देन गेटिंग एंग्री. तो यूजली स्टाफ यू नो जो है वो आपको टाइम पे एक रूम देते हैं, आपका एक टाइम है चेक इन का, तो वो उस हिसाब से वो रूम को प्रेप करते हैं. आप जल्दी पहुंच जाओ, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि आप जल्दी आ गए. दे नीड टू क्लीन द रूम, दे नीड टू यू नो आस्क द प्रीवियस गेस्ट्स टू क्लियर आउट, एंड वो सब कुछ करना होता है. सो चेकिंग इन अर्ली इज रियली नॉट देयर प्रॉब्लम, इज योर्स. सो दे एब्सोल्यूटली हेट दैट. प्लीज़ मत करो, थोड़ा सा भी सिविक सेंस है तो मत करना. बट सिविक सेंस की बात करते हुए, दिस इज तो रियली रियली बैड. अपना रूम जब आप क्लियर आउट कर रहे होते हो, व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू चेक आउट, यार आई अंडरस्टैंड कि आप पूरी साफ सफाई नहीं कर सकते, करो भी मत, करना नहीं चाहिए आपको. साफ सफाई के लिए अलग से क्रू होता है, बट ऐसे नहीं कि मतलब आप ऐसे इतनी बुरी तरह से उसको गंदा कर दो दैट यू नो इवन द स्टाफ इज लाइक, यार हम कैसे साफ करें. क्रू भी मतलब ऐसे सोचने लगे कि ये साफ हो ही नहीं सकता, लाइक इतना कचरा करना, इतना गंद करना, गीला गीला हर जगह पर छोड़ देना. एटलीस्ट टॉवल्स उठा के एक जगह पर रख दो यार, डोंट लीव देम ऑन द फ्लोर. ये सब बेसिक कॉमन सेंस है, ये सब कर्टेसी है जो आपको आई थिंक होनी चाहिए. सो दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग दैट दे हेट, लीविंग द रूम डिस्ट्रॉयड. आस्किंग फॉर फ्री अपग्रेड्स लाइक इट्स required. ये बहुत सारे आजकल influencers जो है कर रहे हैं. दे थिंक दैट इट इज़ लाइक देयर बर्थ राइट. अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मतलब मेरे पास बर्थ राइट है अपग्रेड मांगने का, बिकॉज मेरी इतनी फॉलोइंग है, बिकॉज मैं आपके लिए रील बना सकती हूँ या सकता हूँ, आपको मुझे अपग्रेड देना ज़रूरी है. नो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. दे विल हेल्प यू व्हेनेवर दे कैन. अगर उनको लगता है पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ हो सकता है, तो वो डेफिनेटली करेंगे. बट आप ऐसे डिमांड नहीं कर सकते कि यू नो ये आपका हक है. आपका नहीं हक है. जो रूम आपने बुक किया आपको वही रूम मिलेगी. अपग्रेड हो पाया तो आपकी किस्मत, नहीं हो पाया तो जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर. आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट. ये सबसे ज़्यादा मुझे ये पॉइंट ट्रिगर किया है, आस्किंग फॉर फ्री अपग्रेड्स लाइक इट इज़ अ राइट. एक और है विच इज़ इग्नोरिंग चेकआउट टाइम. ये भी बहुत लोग करते हैं, हल्के में लेते हैं. यार क्या ही फ़र्क पड़ गया, 10 मिनट लेट हो जाएंगे. एटलीस्ट एक प्रायर अप्रूवल, थोड़ा परमिशन ले लो, कॉल करके इन्फॉर्म कर दो या पूछ लो एक्सटेंशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है. बट डोंट टेक योर ओन स्वीट टाइम वन यू नो दैट देर इज़ अ क्रू वेटिंग आउटसाइड, देर आर अदर पीपल वेटिंग आउटसाइड. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सच सच बताओ मुझे, कौन सी चीज़ आपने की है? लेट चेकआउट किया है, या फिर अर्ली पहुंच के गुस्सा किया है कि मैं क्यों नहीं जा सकता रूम के अंदर, या फिर रूम को बहुत गंदी तरह से करके गए हो, या फिर चोरी करके गए हो. मोस्ट कॉमन वो आइटम्स चोरी करना जो आपको नहीं चोरी करनी चाहिए, या फिर टेकिंग जस्ट थिंग्स बैक फ्रॉम द होटल रूम, थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज टू बी टेकिंग. अगर इनमें से कोई भी चीज़ की है मुझे कॉल करके ऑनेस्टली बताओ. 800-1062 पे, यू कैन इवन डीएम अस 106.2 FM पे.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ।
4: वी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी व्हिच हैज कम फ्रॉम यूपी, जहाँ पे जीजा जी ने बोला 50,000 नहीं दे सकता जूता छुपाई के लिए, 5,000 ले लो। उनकी सालियों ने उन्हें कमरे के अंदर बंद करके धुलाई की है उनकी, पिटाई की है उनकी। राइट नाउ गॉट निगार विद मी, यू आर ऑन द अदर साइड। आपने वसूली की है किसी जीजा से?
5: वसूली करनी चाहिए है, बट माय जीजा वाज सो कंजूस, ही हैड टू जस्ट गिव अवे द शील्ड।
4: हाउ मच डिड यू आस्क?
5: 5,000 20 इयर्स बैक।
4: रुपीस और दिरहम्स?
5: दिरहम्स।
4: 5,000 भी नहीं दिए?
5: नहीं, 5 दिरहम भी नहीं दिए।
4: ओए होए होए।
5: I don't know if he's listening. He listens to your show. I don't know if he's listening. He's going to kill me.
4: जीजा जी प्लीज कॉम्पेंसेट, साली इज कम ऑन एयर एंड इज कंप्लेनिंग। यार लोग एक एक दो दो लाख दे चुके हैं 10 साल पहले। माय जीजू डिड नॉट इवन गिव मी 5,000 रुपीज। तो देखो जीजे को अंदर बिठा के पिटाई कर दी है सालियों ने, तो यू एक्चुअली आर अ गुड साली हु डिड नॉट रिजॉर्ट टू दैट।
5: अभी जीजे की रेडियो पे पिटाई हो चुकी है।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
7: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 58% पर पहुंच चुकी है। हाई का टेम्परेचर आज इससे ज्यादा नहीं जाएगा, लोज आज जाएंगे 33 तक।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

धुरंधर मूवी से गहरा हुआ ऑन द बिग मिक्स इट 3:45 ऑन द बिग क्लॉक हेडिंग इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो वेयर वी प्ले नेम प्लेस मूवी थिंग वन लास्ट टाइम बिफोर आई हेड आउट ऑन माय लीव. तो अगर आप खेलना चाहते हो ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल मी 800-1062 पे. लेट्स गेट प्लेइंग नेम प्लेस मूवी थिंग.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 408 ऑन द बिग क्लॉक। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए फिलहाल 56% पर है। हाईज आज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। द टेम्परेचर्स आर अबाउट टू ड्रॉप टू अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Absolutely, ये गेम में भी बहुत ज्यादा वखरा स्वैग लगता है. मुझे आज देखना है किस में वो स्वैग है.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yeah. देखो, रमन का कॉन्फिडेंस जो है, मुझे जिंदगी में वो कॉन्फिडेंस चाहिए. क्योंकि रमन ने कॉल करके पहली चीज ये बोली है कि ज़ोरा, हमने कहा हम भी अपनी बेइज्जती करवा के देखते हैं. क्या यार रमन, क्यों ऐसे? मतलब आप, मुझे लगता है अच्छा खेलोगे यार. सीधे बोल दिया बेइज्जती करवाएंगे.
3: देखते क्या क्या होता है जी.
1: तो पहले मतलब नहीं शो मारना, क्योंकि बेइज्जती हो गई फिर अच्छा नहीं लगेगा. तो पहले ही बोल देना कि बेइज्जती होने वाली है.
3: बेइज्जती होने वाली है.
1: ये रिवर्स साइकोलॉजी अच्छी लगी मुझे आपकी. करते क्या हो रमन?
3: मेरा अपना प्रिंटर का काम है जी, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स.
1: काफी लॉजिस्टिकली आपने ये बात बोल दी मुझे. चलो ठीक है, देखते हैं कि बेइज्जती करवाते हो या हीरो बन के निकलते हो, है ना, गेम में.
3: दोनों में फायदा है, दोनों में नाम हो जाएगा.
1: बिल्कुल सही. चलो, सिंपल गेम, नेम, प्लेस, मूवी, थिंग. एक लेटर दूंगी, चार चीजें बतानी है मुझे पांच पांच सेकंड के अंदर. स्टार्ट करेंगे इजी लेटर के साथ. देखो, आपने मुझे बहुत हंसाया तो मैं आपको बहुत ही इजी लेटर दूंगी अभी, ठीक है?
3: मुश्किल वाला दे दो आप, छोड़ो.
1: यार इतना मतलब ऐसे मत करो, मेरी इज्जत इतना प्यार मत करो यार रमन. चलो नहीं, इजी से शुरू करेंगे, फिर डिफिकल्ट राउंड पे चलेंगे. इजी लेटर जो मैं आपको दे रही हूँ, लेटर एम. मैं वाला एम. एम से बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: ममता कुलकर्णी.
1: एम से बताओ मूवी.
3: मूवी ममता.
1: आप प्लेस प्लेस भी बोल दो, ममतापुर थिंग भी बोल दो.
3: ममता कुलकर्णी. आपको ऐसे बड़ी मुश्किल से सुने होंगे. जगह का नाम महम.
1: नहीं यार, सही बोल रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा हूं. मैं मतलब आपकी क्लास ले रही हूँ, आप मुझे लेने भी दे रहे हो. चलो अब एम से बताओ प्लेस.
3: एम से प्लेस महम
1: है. क्या
3: महम?
1: महम क्या है?
3: महम जगह का नाम है मैडम.
1: ये क्या कर रहे हो रमन मेरे साथ?
3: आपको ऐसी जगह बताऊंगा कि आपको भी तो कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए ना. गूगल पे सर्च करो.
1: एम से मेरे ऊपर
3: सर्च करें. मेरा सवाल है मैडम जी, मेरा सवाल है.
1: एम से मेरे ऊपर मेहरबानी करके ये सब नाम मत लो यार.
3: क्यों नहीं लूं, मेरा जगह का नाम है, मेरा सवाल है यार.
1: चलो अभी एम से बताओ थिंग.
3: मैंगो चलेगा?
1: नहीं, मैंगो फ्रूट है. थिंग बताओ.
3: थिंग बताना है.
1: हो गया अभी बेइज्जती हो गई. नहीं चलो, एक और राउंड खेलने वाले हैं, अभी भी मौका है. यहाँ भी नहीं बेइज्जती करानी. ओके, सारे आंसर्स देने हैं. चलो हंसना बंद करो रमन. ओके, अभी मैं आपको लेटर दे रही हूँ. लेटर टी. टी फॉर टॉय है ना. टी से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो. यार क्या यार रमन, टाइगर श्रॉफ बोल देते.
3: अभी बोलूंगा ना, आपने टाइमिंग का.
1: तनुश्री दत्ता बोल दे. अरे पांच सेकंड से ज्यादा क्या चाहिए आपको?
3: मुझे लगा अभी आप टाइम स्टार्ट होगा. अभी
1: ये ना बहुत एक नंबर की एक्टिंग कर रहे हो आप रमन. चलो
3: तो कम नहीं पड़ेगा ना जी.
1: एक काम करूं मैं, देखो मैं आपके लिए इतनी मतलब इतना आपको फ्री होने देती हूँ. चलो ये स्क्रैप कर देते राउंड, ठीक है? मैं दूसरा राउंड खेल रही हूँ आपके साथ. लेटर मैं आपको दे रही हूँ लेटर यू. यू से बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. उर्मिला मटर. क्या बोल दिया?
3: फिल्म का नाम उमंग.
1: अरे रुक जाओ, टाइमर तो शुरू कर दे तो. ओके, फिल्म का नाम उमंग. ओके, प्लेस का नाम.
3: उज़्बेकिस्तान
1: है.
3: उज़्बेकिस्तान मैडम.
1: उज़्बेकिस्तान बोलना चाहते हो आप?
3: उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान जो भी है.
1: उज़्बेकिस्तान क्या होता है? ओके, यू से बताओ थिंग.
3: अम्ब्रेला.
1: शाबाश रमन. दस चांसेस देने के बाद फाइनली बेइज्जती नहीं हुई. नहीं यार रमन, ऑनेस्टली आपने दिन बना दिया. बहुत ही ज्यादा मजे आए आपसे बात करके. एंड सुपर सुपर फन टॉकिंग टू यू. होप यू हैव अ ग्रेट ग्रेट डे एंड अ ग्रेट वीकेंड.
3: सेम टू यू.
1: थैंक यू रमन, बाय.
3: थैंक यू, बाय.
1: रमन हंसते हंसाते चले गए यार, सुपर सुपर फन. एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी. अगर नहीं भी आता खेलना तो आओ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी ऑन एयर. ऑल यू गॉट टू डू टू प्ले विद मी इज कॉल 800-1062 पे.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.
2: So what do we know? Partners?

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा।
0: ये सुनो,
5: ब्रेकफास्ट में तो मैंने जो है एक ऑमलेट खाया था एंड देन ऑफ कोर्स पराठा, द वी लव पराठा।
6: ऑमलेट पराठा मुंबई, साथ में थोड़ा सा चिली सॉस या ग्रीन चटनी है?
5: नॉट, साथ में द वाइफ लव।
6: भाई बहुत ही चीजी था, चीज ऑमलेट तो नहीं था कहीं?
5: वेरी चीजी ऑमलेट
6: आपके डायलॉग की तरह बिल्कुल, पर अच्छा था, चीजी था लेकिन अच्छा था। दिन की अच्छी शुरुआत हुई, ऐसे ही मक्खन मारते रहो, चीज लगाते रहो, तब जाकर दैट इज द की टू ऑल सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। आपने कहा कि आप बहुत ही बड़े फिल्म फैन हैं, तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आजकल यही है, क्या आपने वो काम किया जो करना हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं? डिड यू गो एंड सी द ओडिसी? टिकट्स मिले? मतलब यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कि प्री प्लानिंग करते हैं, दैट इज द ट्रू प्रूफ दैट यू आर अ बिग बिग फिल्म फैन।
5: थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स वी प्लान अबाउट लाइक 3 weeks earlier that we should go for the same day and we found the ticket and it was I can say the show was completely full.
6: Yeah.
5: And it was a fantastic movie. The movie was not all about the battle, it's about the survival.
6: Kya
5: so that was a fantastic
0: movie. Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
7: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक यार, E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, हैवी ट्रैफिक ओवर देयर। वहाँ पे एतसलात एकेडमी के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से एटलीस्ट 12 मिनट का डिले है। उसके अलावा अल गिसेस इंडस्ट्रियल एरिया 4 के पास D97 अमान स्ट्रीट अनदर कार एक्सीडेंट ओवर देयर। अगर आप है अल नहदा स्ट्रीट S115 वहाँ पे भी एक कार एक्सीडेंट और एक कार एक्सीडेंट मनकूल के पास भी यार। सो प्लीज मेक श्योर यू आर ड्राइविंग सेफ। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन 0543091062।
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

जी तो यार हमारा बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन कभी कभी वो सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते, दिली दिल में वो रह जाती है। बट एनी वे विद दैट इट्स माई टाइम टू टेक योर लीव। 5 बजने को आए हैं। अगर आपने शो एंजॉय किया, मेक श्योर टू गो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट्स 106.2 बिग FM। और मेरी आवाज़, मेरा अंदाज़ अगर आपको पसंद आया हो, आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ज़ोहरा अमीन वहाँ पर मेरा हैंडल है। इनफैक्ट आई एम हेडेड ऑन अ वेरी लंबी छुट्टी, तो वापस कब आप मेरी आवाज़ सुनोगी ये तो मैं मतलब नहीं बता सकती भी आपको, बट I really, really hope कि आप और मैं

इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ज़ोहरा अमीन वहाँ पर मेरा हैंडल है. इनफैक्ट आई एम हेडेड ऑन अ वेरी लंबी छुट्टी, तो वापस कब आप मेरी आवाज़ सुनोगी ये तो मैं मतलब नहीं बता सकती भी आपको, बट आई रियली रियली होप कि आप और मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे, वहाँ पर चिटचैट करेंगे एंड आप मेरी वेकेशन स्टोरीज पोस्ट ज़रूर देखना, ज़ोहरा अमीन मेरा हैंडल. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2. दिस इज़ द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग. क्या मुझे आज समझ नहीं आ रहा है. आखिरी दिन है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, और ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ना अगर कभी हुए मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो मैं बताऊंगी कि जुलाई 2026 का जो रेट्रोग्रेड था वो कितना भारी था. फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9. वी गॉट सम फैंटास्टिक म्यूजिक लाइन अप फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स व्हाइल स्टक इन जैम वी जैम हियर विद द कैरियोकी. आज तो प्लीज मुझे गाना सुनाओ, मुझे बहुत जरूरत है. ऑल द डिटेल्स व्हेन आई कम बैक. किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Yo, yo, yo, yo, got an Angela.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
8: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
7: अलरास बोले तो
8: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
7: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। Visit Al Ras, Middle East ka number one auto AC spare parts dealer.
9: It's hot it up with big tickets.
10: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
9: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
10: Buy now at bigticket.ae.
11: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
14: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
15: It is 36 degrees, लो जाएगा अराउंड 33, वेरी ह्यूमिड टुडे, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 68% पर।
14: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is the Big Thrill. I'm Mansi, and why am I so happy? Because Sid ka abhi message aaya that he's going to come tomorrow. So that gives me like a proper 8 ghante ki sleep. Aaj subah mujhe lag raha tha ki main university ke dinon ki tarah 3-4 ghante ki neend pe guzar lungi apna din. But फिर मुझे याद आया कि मेरी उम्र नहीं रही है. मतलब when you hit 30s, you really need that 8 hour. फिलहाल while you're hitting the roads, getting back home, every single evening we have this fun session here. मतलब आवाज आपकी, audience मेरी, we do the karaoke.
1: Karaoke.
2: अब यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं लेना है, बस इतनी कोशिश करनी है कि लोगों के कानों पे प्रेशर ना पड़े. मतलब दिल का दर्द दिल तक ही रहे, कानों तक ना पहुंचे. अगर आप भी गुनगुनाते हैं बाथरूम सिंगिंग से सीधा हम आपको लाइव ऑन एयर सिंगिंग कराएंगे. वेरी वेरी सिंपल, आई एम गोना प्ले यू अ ट्रैक. अगर आपने ये ट्रैक पहचान लिया

तो पहचानने के बाद गाना भी है. इफ यू गेस द ट्रैक देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कैरियोकिंग हियर. यू कैन आल्सो रजिस्टर ऑन 0543091062.

0: अरे को है क्या
1: काटेगी क्या
2: घर से बात तो खायल हो चुका है आपकी मोहब्बत का घायल हो चुका है बावला हो जाता है ये बावला
0: एक मिनट
3: बी

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, you have Big Thrill. I'm Mansi. Subha, I was keeping you company. Sham, maybe I'm keeping you company. I think I'm a great company. We are karaokeing here while you're heading back home. We jam in the traffic jam. यहाँ पे मैंने एक track आपको सुनाया था और कहा था कि अगर आप bathroom singing करते हैं तो platform यहाँ पे है. अपने हुनर को छुपाओ नहीं, सबको दिखाओ. Hello.
2: Hi.
1: Hi. Why बोल रही हूँ मैं? Hi.
2: Because you said hello.
1: आवाज आपकी इतनी अच्छी कि मेरा hi why में निकल गया.
2: जी सर, तो मुझे क्या करना है?
1: नाम बता दीजिए. मतलब मैं समझ रही हूँ कि नाम गुम जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है वाली वाइब है आपकी, बट आपका नाम बता दीजिए.
2: मेरा नाम फैजान है.
1: फैजान, फैजान ऐसे मतलब एकदम बैरिटोन वॉइस में जब आप बात करते हैं तो गाना गाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं. राइट. मतलब गॉड गिफ्टेड है ये. फिलहाल गाना वाना गाते हैं आप, इतनी खूबसूरत आवाज है. चलो जी, आपके दिल उससे मिले होंगे किसी से, इसलिए शायद नॉस्टैल्जिया आ गया है. बट अभी आपने मेरी उम्मीदें इतनी जगा दी हैं, बढ़ा दी हैं, तो
0: कारियोकी
1: जी शुरू हो जाइए. लगा ये कौन सा बार बार सुर लगा रहे, रुको अभी लगने दो, बहुत पहले आपके सुर लग रहे
2: हैं.
1: 3, 2, 1 अब शुरू हो जाइए.
2: दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर चुपके
1: चुपके. फैजान साहब, ये जिसके लिए गाया था उससे दिल मिला कि नहीं मिला, कि किसी और से मिला लिया उसने गाना सुनने के बाद? अच्छा गाया, बहुत दर्द था आपकी आवाज में, लग रहा है कि ये दिल मिलते मिलते रह गए.
2: बाथरूम सिंगर तो हूँ मतलब.
1: नहीं, अच्छा ही गा रहे, मतलब बाथरूम से बाहर आने का मौका आपको मिल गया, अब आप बस गाओ बिंदास. मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत शर्माओ, गाना आया ना आए गाना चाहिए, खुद को रिलैक्स करना जरूरी है. सामने वाला चाहे हमारे गाने से परेशान हो जाए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट बैड. यू ट्राइड रियली रियली वेल एंड आई होप ये गाना नॉस्टैल्जिया जो आप कह रहे हो याद आ गया है, कुछ पुरानी बातें तो जिसके लिए गाया हो आपकी जिंदगी में है कि गायब है?
2: नहीं, वो तो आ गई, शादी हो गई.
1: हाय हाय हाय, तो बस अब घर जाके गाना दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके. ठीक है, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय.
2: थैंक यू मानसी,
1: बाय. दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग. यहाँ पे इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं है, बस गाने का दिल है तो कॉल करो 800-1062 पर.
0: कारियोकी Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रही तेरी ना।

आज तक गिल की आवाज में ये बात सुनेंगे आप 5 से 9 एंड आज काफी लंबा दिन रहा है बट यू गाइस आर सिंगिंग यू गाइस आर एंटरटेनिंग मी तो बड़ा मजा आ रहा है वी डूइंग द कारियोकी. अगर आप भी गुनगुनाने का शौक रखते हैं ऑल यू नीड टू डू इज रजिस्टर करना है व्हाट्सएप करके कारियोकी अपना नाम टू 0545091062. कमिंग अप ब्रेक यूज पर तनिष्क बागची की आवाज दिस वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill, Mansi, and yahan par we are doing the karaoke. While you're heading back home, we jam in the traffic jam, and someone with a beautiful name and a beautiful voice, we've got Arsh. Hi Arsh.
2: Hello Mansi,
1: I am good. Yeah, aapki original awaaz hai, kya bana ke bana rahe ho?
2: Actually, aksar log mujhe yahi poochte hain ki bana ke bana rahe ho, lekin wo dheere dheere samajh jaate hain ki meri original.
1: Very nice. Aapne kabhi radio pe aane ka kyun nahi socha Arsh?
2: I tried once. कोई कंपटीशन था छोटा मोटा बोन है लेकिन फिर मैं गया नहीं. आई वाज लाइक कौन जाएगा.
1: वेरी नाइस. आई वाज लाइक मैं जीत गया कौन जाएगा. तो आप गाना गाते हैं, इतनी अच्छी आवाज, ऊपर वाले ने आपको नवाजी है.
2: जी मैं आवाज बदल के गाता हूँ.
1: अरे वाह, आ जाएगा मजा. असली कारियोके किंग आ चुके हैं.
0: कारियोके
1: चलो जी. हाँ जी,

0: 보니 춥게 춥게 सबको हो रही है सबको हो रही है सब चुप के हो तो मिल रहे
1: वाह, ये कुमार सानू आए हैं कहीं से साइड से, है ना? अच्छा गाया, मतलब सुदेश भोसले से कुमार सानू एंड फिर एक आपने अपना वर्जन भी गाया, बट नॉट बैड एट ऑल। तो आप गाते हैं पार्टीज वार्टीज में, यू नो माइक लोग आपको पकड़ा देते हैं कि छुड़वा लेते हैं आपसे?
2: कभी कभी लोग मुझसे मिमिक्री भी करवा लेते हैं।
1: और पहली बार मुझे ऐसे कोई बंदा मिला है जो मेरी तरह हंसता है कि दो तीन बच्चे रोने लग जाए। अरे पर मजा आ गया यार अर्श, बहुत मजा आया। यू आर फैंटास्टिक एंड आई थिंक यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। सो
2: so lovely talking to you. Finally, आपसे बात हो गई. It was a big day for me. Thank you so much.
1: Sweet. You have a great evening. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Karaoke.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, yeh hai Big Thrill. Mansi, we're playing the 5-second rule. And Mohan Pyare. Hi Mohan, kaise aap?
3: Bas badhiya.
2: Kya karte hain Mohan aap?
3: Main delivery karta hoon.
2: Very, very nice. You guys are very important for us.
3: Hotel wale aap kya karte hain? Main hotelon mein karta hoon.
2: अच्छा तो मतलब आप होटल्स में डिलीवरी करते हैं और होटल वाले रेस्टोरेंट्स वाले हमारे यहाँ डिलीवर कराते हैं. वेरी नाइस. मतलब आप रॉ मटेरियल डिलीवर करते होंगे ना वहाँ.
3: हाँ जी हाँ जी.
2: वेरी नाइस. कितने साल हो गए यहाँ पे?
3: मैं 2013 से हूँ.
2: काफी साल हो गए यार.
3: हो गए बुड्ढा इधर ही हो गए. बाल वाल इधर ही गिर गए.
2: आवाज से तो नहीं लग रहे हो कि बुड्ढे हुए हो. जवानी साउंड कर रहे हो. पता है किसी ने मुझे कहा था अगर यहाँ पे आपके बाल झड़ने लग जाएं और पेट बाहर आ जाए मतलब बस आप तरक्की की राह पे हो. तो ऑल द वेरी बेस्ट. फिलहाल मोहन हम खेलेंगे 5-second rule. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: 3 शाहरुख खान की मूवीज.
3: कल हो ना हो.
2: कुछ ना कहो कुछ
3: होता है.
2: कुछ ना कहो. 5 सेकंड कब के हो गए मोहन? फटाफट खेलने वाला गेम है. हाँ चला गया. अभी रुको फटाफट दौड़ो इसमें. 3 ऐसी चीजें जो दूध से बनती हैं और आप खा सकते हैं.
3: पनीर, दही
2: और
3: गुलाब जामुन.
2: गुलाब जामुन.
3: रसमलाई.
2: ओफो ध्यान आज आपका कहीं और है. 3 ऐसी चीजें जो मोहन आप बीवी से छुपाते हो. कितना झूठ. ये बाल ऐसे नहीं झड़ रहे हैं. यहाँ के पानी को बदनाम मत करो. ये जो झूठ बोलते हैं ना बंदे उस स्ट्रेस में उनके बाल झड़ते हैं. पानी को ऐसे आप लोगों ने बदनाम कर रखा है.
3: क्या बताऊँ मैं 3-5 सेकंड में.
2: 3 ऐसी फिल्में जिनमें दिल आता है टाइटल पे.
3: वो भी दिल
2: है. आसान साउंड करता है बट इतना आसान ये गेम है नहीं है ना.
3: हाँ जी उस टाइम पे पता नहीं किधर चला जाता है माइंड से आउट हो जाते हैं. मैं पहले बार खेल रहा हूँ और पहले बार आपसे बात कर रहा हूँ फोन में.
2: लोग ये भी कहते हैं मोहन के सुंदर लड़की से बात करते करते लड़के अब अक्सर भूल जाते हैं.
3: यही होगा शायद. थोड़ा सा बकला गया मैं. True. मानना पड़ेगा इस चीज को.
2: Oh, you're so cute, Mohan. It was so much fun talking to you. Thank you so much call करने के लिए.
3: Thank you.
2: Bye.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Chill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो।
4: ब्रेकफास्ट में तो मैंने जो है एक ऑमलेट खाया था एंड देन ऑफ कोर्स पराठा, द वी लव पराठा।
5: ऑमलेट पराठा मुंबई, साथ में थोड़ा सा चिली सॉस या ग्रीन चटनी है?
4: नॉट, साथ में द वाइफ लव।
5: भाई बहुत ही चीज़ी था, चीज ऑमलेट तो नहीं था कहीं।
4: वेरी चीजी
5: ऑमलेट आपके डायलॉग की तरह बिल्कुल, पर अच्छा था, चीजी था लेकिन अच्छा था। दिन की अच्छी शुरुआत हुई, ऐसी मक्खन मारते रहो, चीज लगाते रहो, तब जाकर दैट इज द की टू ऑल सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। आपने कहा कि आप बहुत ही बड़े फिल्म फैन हैं, तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आजकल यही है, क्या आपने वो काम किया जो करना हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं? डिड यू गो एंड सी द ओडिसी? टिकट्स मिले? मतलब यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कि प्री प्लानिंग करते हैं, दैट इज द ट्रू प्रूफ दैट यू आर अ बिग बिग फिल्म फैन।
4: थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स वी प्लान अबाउट लाइक 3 weeks earlier that we should go for the same day and we found the ticket and it was I can say the show was completely full.
5: Yeah.
4: And it was a fantastic movie. The movie was not all about the battle, it's about the survival.
5: Kya
4: so that was
5: hai.
4: A fantastic movie.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: Lagta hai barf padne wali hai.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 51% पर।
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Good evening. ये है Big Thrill Mansi. We're playing the 5-second rule. मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. तीन चीजें बनानी होती है 5 सेकंड के अंदर. I know it sounds very, very easy. देखा ना आपने मोहन प्यारी कैसे अटके. So wait until you play this game. Coming up from तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. And अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देखो, इट इज अवेलेबल ऑन OTT. आई एम टॉकिंग अबाउट शनाया कपूर गौरव आदर्श की तू या मैं. होता है ए दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है. ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड ओरिजिनल गाना नीलम एंड सनी देओल पे फिल्माया हुआ है, बट कमाल रिक्रिएट किया है राइट हियर ऑन पिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, दिस इज द बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. एंड यू नो, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मेक एवरीवन हैप्पी, एंड दैट इज आइसक्रीम. एंड आई एम सो ग्लैड, क्योंकि आजकल क्या, कई महीनों से मैं जिम में नहीं जा रही हूं, तो मैं लो कैल ऑप्शन, जीरो शुगर ऑप्शन ढूंढती हूँ, और आइसक्रीम है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं. हाँ, प्लीज डोंट मेक एनी फेसेस, जीरो शुगर आइसक्रीम भी अच्छी लगती है. बट आज है वर्ल्ड आइसक्रीम डे, तो आपका आइसक्रीम फ्लेवर आपके बारे में क्या कहता है? इफ यू आर अ चॉकलेट पर्सन, यू आर अ वनीला पर्सन, स्ट्रॉबेरी मैंगो काइंड्स, और यू आर समवन जो डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स ट्राई करता है. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स व्हेन आई कम बैक. फिलहाल देयर इज अनदर थिंग दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, एंड दैट इज इमरान हाशमी मेकिंग अ कमबैक ऑन द बिग स्क्रीन्स. कांट वेट फॉर आवर अप एंड टू.

0: Earn Gojek coins every time you use the app and redeem them for amazing discounts and deals from top brands in the UAE and a whole lot more. Download GoChat, the free calling app, today.
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: आज है वर्ल्ड आइसक्रीम डे. अब आइसक्रीम इज नॉट जस्ट अ स्कूप ऑफ हैप्पीनेस, इट ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी. इफ यू आर अ चॉकलेट आइसक्रीम पर्सन, यू आर अ वनीला आइसक्रीम पर्सन, इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरीके से आइसक्रीम खाते हैं उससे भी पता चलती है. वॉफल और कोन टाइप्स, कप और डायरेक्टली फ्रॉम द टब. सो इफ यू टेल मी योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, देन आई विल टेल यू कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई ChatGPT. तो आप मुझे अपना फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर बता सकते हो 800-1062 पर. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग टाइम राइट नाउ 7:10।
2: बॉलीवुड

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
4: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
5: नमस्ते।
6: ओला।
5: अस्सलाम वालेकुम।
7: बोंजूर।
8: नी हाओ।
7: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
9: Wow, your hair color looks stunning.
10: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
9: Yeah, right.
10: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
9: Really?
10: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
9: I'm buying it right now.
10: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
11: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 36 है अभी भी, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 52% पर।
1: अलराज ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलराज.me। Big 106.2.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, मैं हूँ मानसी, ये है Big Thrill, and आज Mercury retrograde के the end होने की खुशी में we all should have some ice cream. It's World Ice Cream Day. And quick question, what's your go-to scoop? Because research कहती है कि आपका favorite flavor is not just regular craving, it's your personality in a bowl or a cone. If you are team chocolate, just like I am, I do not touch any other flavor but chocolate. मतलब मैंने कोई और फ्लेवर आई डोंट रिमेम्बर ट्राई भी किया होगा, एक आधा ऐसा बाइट लिया होगा, बट आई विल ओनली हैव चॉकलेट आइसक्रीम. सो अगर आप भी टीम चॉकलेट हैं, यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी. यहाँ पर मैं जाने पार्टी की, हम चार्मिंग हैं, एक्सप्रेसिव हैं, ड्रामेटिक हैं थोड़े बहुत, बट वी लव अ गुड स्पॉटलाइट. बेसिकली हमारे आस पास दिस इज नेवर डल मोमेंट एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस. बट इफ यू आर अ स्ट्रॉबेरी पर्सन, यू आर वेरी थॉटफुल, आप इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल हैं. पीपल माइट कॉल यू क्वाइट, बट आप सुपर लॉजिकल, वेरी लॉयल एंड क्वाइटली यू कीप एनालाइजिंग एवरीवन इन द रूम. लेट मी नो योर फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का एंड आई टेल यू कि वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है. व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0543091062 पे, या फिर सीधा टोल फ्री नंबर है, कॉल कर लो 800106 पर.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज अब वर्ल्ड आइसक्रीम डे और मैंने कहा था कि आपका आइसक्रीम फ्लेवर आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है. अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा चैट जीपीटी यहाँ पे सर्विस के लिए है. एंड आई हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम अंकिता एंड शी सेज आई हैव अ वेरी वियर्ड फ्लेवर इन माइंड एंड दैट इज चोको मिंट. चोको चिप मिंट फ्लेवर जो होता है, मिंट चॉकलेट एंड चोको चिप्स. सो अगर आपको भी ये फ्लेवर अच्छा लगता है जस्ट लाइक अंकिता, मैंने आज तक ट्राई नहीं करा, आई थिंक इट्स गोना बी अ वाइब. सो या द पीपल हु लाइक मिंट चोको चिप, यू आर एम्बिशियस, यू आर प्रैक्टिकल एंड थोड़े बहुत आप कंफ्यूज भी रहते हो. मिंट चिप फैंस आर कूल एंड कलेक्टेड ऑन द आउटसाइड विद पेंशेंट फॉर फॉरवर्ड प्लानिंग. आप गोल ओरिएंटेड हो, आप ऑनेस्ट हो, दो यू डू हैव अ स्लाइट बहस करने वाला एज. मतलब इफ समवन चैलेंजेस योर लॉजिक यू गेट इन टू आर्ग्यूमेंट, सो यू गिव अ रिएक्शन. सो या दिस इज फॉर मिंट चॉकलेट चिप लवर्स. इफ यू आर अ वेनिला पर्सन, समबडीज आस्क मी, सो लोगों को लगता है कि वेनिला बहुत बेसिक होता है, बट बॉस वेनिला क्लासिक होता है. सो इफ यू लव वेनिला, आप एक्सप्रेसिव हैं एंड आप काफी इम्पल्सिव भी हैं डिस्पाइट वेनिलाज अनफेयर रेप्यूटेशन फॉर बींग बेसिक. रिसर्च शोज जो लोग वनीला आइसक्रीम खाते हैं आर रिस्क टेकर्स. यू रिलाई हेविली ऑन इंट्यूशन रादर देन लॉजिक एंड आप थ्राइव करते हो इन वार्म क्लोज निट रिलेशनशिप. अब इसी के बाद ना किसी का मैसेज आ गया कि आई एम अ कुल्फी पर्सन, मुझे बताओ कि चैट जीपीटी कुल्फी के बारे में क्या कहता है. आपको बताती हूँ इन जस्ट अ बिट. वी सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड आइसक्रीम डे.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज है वर्ल्ड आइसक्रीम डे, सो मैंने अपने चैट जीपीटी से इतनी मेहनत करके निकाला, व्हाट डज योर पर्सनालिटी से अबाउट द काइंड ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर यू चूज. एंड मुझे मैसेज आता है गोविंद का, एंड ही सेड आई एम अ कुल्फी पर्सन. गुड इवनिंग.
2: हाय, गुड इवनिंग.
1: ये कहाँ आइसक्रीम डे के दिन कुल्फी पर्सन. वैसे देसी आइसक्रीम है यार, कुल्फी कह सकते हैं.
2: देखो मतलब मैं, ये एक डिफरेंट बॉल गेम हो गया, इस पे डिबेट कर सकते हैं. आप कितना भी आइसक्रीम खा लो, वो आपकी क्रेविंग खत्म नहीं होगी जब तक आप कुल्फी नहीं खाओगे.
1: सी आई लव कुल्फी एंड आई विल नॉट डिनाई, आई एम ऑल्सो चॉकलेट आइसक्रीम काइंड ऑफ अ पर्सन, बट ऑन द डेज जब मुझे थोड़ा सा देसी मीठा खाना होता है तो कुल्फी होती है. बट मेरे चैट जीपीटी ने बताया कि अगर आप कुल्फी खाते हैं जस्ट लाइक गोविंद, तो मतलब आपका दिल बहुत ही सॉफ्ट है, दो मिनट में पिघल जाते हो आप.
2: ये बोल सकते हैं. लड़कियों के बारे में नहीं है, छोटे बच्चे को भी देख के आप पिघल सकते हो.
1: देखो मैंने लड़कियों का सर जिक्र ही नहीं किया, ये तो आपने जो है वो कुल्फी के ऊपर पिस्ता और बादाम डाला है. मैंने कहा था आपका दिल जो है वो पिघल जाता है.
2: यस एक्चुअली आई एम फ्रॉम राजस्थान और आई एम स्वीट टूथ गाय. आप अगर आइसक्रीम में भी बोलोगे तो कुल्फी मेरा फेवरेट फ्लेवर है.
1: वेरी नाइस. कुल्फी पीपल आर कॉन्फिडेंट, क्लासिक एंड यू डोंट फॉलो बेसिक ट्रेंड्स.
2: एंड इफ यू वांट टू ईट फालूदा, यू कैन टेक द बेस ऑफ फालूदा विद कुल्फी फ्लेवर.
1: I don't like faluda at all. I don't like that faluda. For me, kulfi is plain kulfi. वो जो उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा, रबड़ी और फलूदा डलता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है.
2: Oh, good.
1: नहीं, आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए सर, जैसे कि मैंने आपके रेस्टोरेंट की कुल्फी के बारे में कुछ बोल दिया.
2: नहीं, no, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है, इट्स ओके.
1: बट पता है कहीं की भी कुल्फी खा लो, जब हम छोटे थे ना तो वो दोपहर में टन टन टन टन करके वो कुल्फी वाले भैया आया करते थे, 5 की 10 की 20 की कुल्फी. उससे अच्छी कुल्फी मैंने आज तक खाई नहीं है. वो ना वो आई थिंक वो जो एकदम नाजुक सी उसकी डंडी होती थी कि ज्यादा देर अगर कुल्फी हाथ में रखी तो टूट जाती थी वो.
2: उसका एक तड़का ये है कि वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो सॉल्ट में सॉल्टिंग किया जाता था चारों तरफ, तो उसका एक फ्लेवर आता है.
1: बहुत कमाल है, मतलब वो स्वाद आता ही नहीं है. बट थैंक यू सो मच गोविंद. ये मैं पूछना चाह रही हूँ व्हाट्सएप पे, ये आपने टूटा हुआ बनी नैना का दिल क्यों बना रखा है, किसको कुल्फी खिलानी थी उसने नहीं खाई.
2: हाँ ऐसा ही समझ लो कि हर किसी की जिंदगी में ये जवानी दीवानी होती है.
1: कुछ भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ हो वहीं के मजे लो. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड हाउ अबाउट जस्ट हैव सम कुल्फी टुडे. आज हमने इतनी कुल्फी की बात कर ली है.
2: Sure. ये तो मेरा समर में रेगुलर डेजर्ट है.
1: आई नो, आई मीन आई फील लाइक हैविंग कुल्फी नाउ, सो आई माइट ऑर्डर सम. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: श्योर, थैंक यू, गुड डे, गुड इवनिंग.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi. And of course, आज के दिन back in 1993 एक क्लासिक रिलीज हुई थी, हम सबके बचपन की बहुत खास मूवी है. इनफैक्ट जमाने हो गए मैंने वो मूवी देखी नहीं, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी वेरी वेरी सून. बहुत जरूरी होता है टू स्टे इन टच विद योर इनर चाइल्ड एंड सच मूवीज आर कोर मेमोरीज ऑफ आर चाइल्डहुड. अब कौन सी मूवी ये है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको क्लूज देती हूँ. इनफैक्ट दिस इज स्टोरी आप ऑन आर इंस्टाग्राम पेज, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आज ही के दिन बैक इन 1993 आमिर खान, जूही चावला एंड कुणाल खेमू टुगेदर.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Welcome to the last of the show and saving the best for the last. I'm going to take you back to your childhood, my childhood. This movie has been a very core memory of our childhood as 90s babies. And I think humne movie कई बारी एस किड्स रीवॉच की है. आमिर खान, जूही चावला एंड द लिटिल कुणाल खेमू, महेश भट्ट की मूवी, व्हाट ब्रिलियंट म्यूजिक. अब आज देखो तो समझ नहीं आता है कि इतनी अच्छी क्यों लगती थी, बट एज अ किड आई लव लव लव दिस मूवी. वीसीआर पे बार बार कैसेट लगा के मैं ये मूवी देखती थी. आज ही के दिन 1993 में मूवी रिलीज हुई थी. मोर डिटेल्स कमिंग अप. अगर आपने गेस कर लिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 0543 09 1062 पर.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: स्टिल 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 58% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: आज के दिन बैक इन 1993 एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी जो हम सबकी कोर मेमोरी हैज किड्स. आई एम अज्यूमिंग यू आर आल्सो अ फेलो मिलेनियल. आमिर खान, जूही चावला एंड ऑफ कोर्स द लिटिल कुणाल खेमू.
3: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चल.
2: हम है राही प्यार के. व्हाट अ मूवी. कितनी बारी आपने और मैंने ये मूवी एज अ चाइल्ड एज अ किड देखी है VCR वाले जमाने में. द मूवी वॉज हेवली इंस्पायर्ड बाय द 1958 हॉलीवुड क्लासिक हाउस बोट. द को प्लॉट वॉज एब्सोल्युटली सेम के बैचलर अंकल सडनली वॉज forced to take care of his late sister's unruly kids, hiring a very quirky runaway woman, and Juhi Chawla ne wo role bahut kamal play kiya tha. In fact, Juhi Chawla ko Filmfare Award bhi mila tha for her iconic performance, and this movie also won the National Award. Kunal Khemu ka debut tha as a child artist, and he was fantastic as this little बदमाश बच्चा कॉल सनी. आई स्टिल रिमेंबर द सीन के थर्मामीटर गरम दूध में हमने भी बहुत ट्राई किया है डालने का. दैट आइसक्रीम सीन. ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली मूवी. इट्स बीन इयर्स कि मैंने ये मूवी देखी हो. आई थिंक इट्स टाइम टू रीलिव आवर चाइल्डहुड बिन अ वाइल. सो ओवर द वीकेंड आई माइट वॉच हम है राही प्यार के. आज ही के दिन बैक इन 1993 रिलीज हुई थी. आपकी क्या कोर मेमोरीज हैं इस मूवी के साथ, लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम. आई हैव पुट अप अ स्टोरी. तो मुझे बताओ योर फेवरेट पार्ट और योर कोर मेमोरी अबाउट हम है राही प्यार के.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से भुलू भुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

कटिंग नाच हो गया है। सुबह 5:30 से लेकर, मतलब आई तो मैं यहाँ पर शो करने 7 बजे थी, बट 5:30 उठना पड़ता है यार, लड़कियों को टाइम लगता है टिल 9 PM। आज जो जाके मैं सोने वाली हूँ ना, ओए होए होए, बड़ी अच्छी नींद आएगी एंड आई होप जल्दी आ जाए। We've got this one coming up, इसी के साथ कॉकटेल 2 से अप नेक्स्ट ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Vic 106.2, the beat of Bollywood.

0: www.thefunasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sofi and Night Feels, your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill, on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।